0: कभी निसम तंग यु इसी सिसु से समीदा जोवा सुशुमी ने मोशिम दिन जे जिमदु मशिना नोग सम मोथा छुबे छुमी छोरी इने छुमी दी निसम बक्यों दा तुमदु
1: ता तुरे ता मतो भंजिस कब जंग रानो ये बतिये सांगे सिंग में रसम सीगी
0: वे राशु दा किसी ना थांगुने चुमी तो में ना तसे वो गुला कुशी की मारी ला ओ गुदर लाए न्यू मौसम में नशीन की री
1: किसी दिन रे इना मरानी के चौसी रागों दे न्योतु हुई की मारे मरानी सावो कांबो दे दे कला कौन क्यों दिन रे आ निदार शिकार दाल योजे दे हुई किरता खर्सा यंजी तुंजो दा पर में चुंजो पंसों और युनांग चुंजे दे तुंजो मरानी समझो ची तो मासी किसी चुंजो कांग लक्ष्य चुंजो शो में ना मरानी के फे फे दा 多多消费，清泉比草木我先要买些，能还得跟小张我先买吧，草地里出海料嘞，一年人生这么些啊，全大只军都中买些。 上了村民有难买嘞，俺长大看车没多，别得少看不听那车上车的呢，上个拖不动，想想啥东西都是搞搞当吧，这钱能俺来你，我以为没差一个哩。
0: Gavrungunne Lopchungla Lopchen Sotugi Junye Barsi Nangshi Dalo Yewa Yunne Yokhasu Cha Sabe Shego Yam Tsenbyo Nga Yangya Sotri Tukri La Tutsu Yine Gyunko Kandres Chichiri Dinja Chungna Yokhasu Yomare Mishinye Dinja Yoma Sipshingu Yu
1: Ah, Chitara Nila Matongda Dukar Chung, Kwa Junye Ba Yunga, Tara Nga Dush 没事，让给，咱俩咋就忙不出流动吃瓜去不是？一天小瑞，让什么都吃我妈这啦，一大家伙妈是。吃我吃呢，做真的大是吧？我妈陪呢，咱们亲大是，从来没对给我是吧？如果准备学，开赛吃多是，提对让了吃我啥不打，穿啥不，我们说不动也要是。
0: 喂，让狗吃。
1: 但是 still
0: 进度呀，嗯，又出来吃下，
1: 都是在对上查下，别说了。

0: दोस्त दुई रंगे बूटों पर से चांसिया।
1: ये निम्न तो कुछ है, लोग आस चुके। तो निम्न से शेना, रां बूटों पर से जो दुनिया, आई जांग या कुछ भी, आ कहीं जी थे ला, रां ले तब जो चांद दुम तो।
0: रां का बेटी, आ मारी, सो सोरी। रंग खुदा वे सामने दे, मैं हंस सेफ जी।
1: मैं तो ये, रंग खाली ने, शेले लग चुके से खाली ना, ना थोड़ी भी नहीं तो।
0: तेरे इंबे वांग तो ताने, ने गोल में जोंग जी, देख मार जी।
1: कमांड सेशन।